0: मनिका खुलामी मगर। सम्पर्क नम्बर 9869-2245-44
1: 9840-3738-93। ओम कपास उद्योग गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ग्वालटार सिन्धुली।

0: हजुरको आवाज हजुरकै साथ यो हो हजुरको रेडियो 102.1 MHz।
1: चढ़दे सूरज टलदे देखे, बुझदे दीवे जलदे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिसदा इस जग विच कोई नी, ओ पुत्र भी पलदे देखे, ओदी रहमत दे अगे बंदे पानी उत्ते चलदे देखे। लोकी कहंदे दाल नी गलदी, मैं ता पत्थर गलदे देखे, जिन्ना ने रब दी कदर ना कीती, अंत च हाथों मलदे देखे, कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिते मंगन छावां, मनू दाता तू सब कुछ दिता, मैं तेरा क्यों ना शुक्र मनावां, मैं तेरा क्यों ना शुक्र मनावां।

लास्ट वीक ये पंक्तियां मैं बाबा बुल्ले शाह की पढ़ रहा था तो मैं काफी उससे प्रभावित भी हुआ, लेकिन मुझे इसका कहीं अनुवाद नहीं मिला, तो मुझे जो भी इससे समझ आया मैं चाहूंगा मैं आप सबसे शेयर करूं। बाबा बुल्ले शाह का जन्म 1680 में और उनकी मृत्यु 1757 में हुई थी। ये दोनों जगह आज पाकिस्तान में है। तो शुरू करते हैं। चढ़दे सूरज तलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे। बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं, हर चीज परिवर्तनशील है, अगर जीवन है तो मृत्यु भी साथ में है। तो इसीलिए यहां कुछ भी अहंकार नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। वहीं अगर हम समर्पण भाव लेके चलते हैं तो फिर वो ईश्वर हमें कहां पे ले जाता है ये शायद हम कभी सोच भी नहीं पाते। दूसरा, हीरे दा कोई मुल ना जाने, खोटे सिक्के जल्दे देखे, जिसदा इस जग विच कोई नहीं, ओ पुत्तर भी बलदे देखे, उस दी रहमत दे अग्गे बंदे पानी उत्ते चलदे देखे। सत्य को यहाँ कोई भी अभी मूल्य नहीं दे रहा, चाहे धन है, चाहे पद है या प्रतिष्ठा है, उसको पाने के लिए कोई भी रास्ता जब हम चुन लेते हैं तो ये ठीक नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन वही जो सत्य की राह पे चलता है और उसको कोई मार्ग नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर उसको संभाल लेता है और फिर उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो इसीलिए जब उसकी रहमत होती है, उसकी जब पूरी हम पे कृपा होती है, तो कुछ भी ऐसा कार्य जो असंभव हमें लगता है वो संभव होना शुरू हो जाता है। तीसरा, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ता पत्थर गलदे देखे, जिन्हां ने रब की कदर नहीं की हाथों खाली मलदे देखे। जिनको लोग भी कहते हैं कि ये बहुत अहंकारी हैं, ये किसी की सुनते नहीं है, या जो मनमानियां करते हैं, जो दूसरों को दुख देते रहे हैं, लेकिन एक समय उनका भी आता है कि उनका भी अहंकार, जो कठोर हृदय है, वो भी पिघलने लगता है। हालांकि ये वही लोग हैं जो ईश्वर को मान के नहीं चलते, जिनके जीवन में प्रेम की कमी रही है, जो दूसरों में भी प्रेम नहीं बांध सके, लेकिन जब उनका अंत समय आता है, जब मृत्यु आती है, तो फिर उनके हाथ पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहता। आखिरी पंक्तियां, कई पैरां तो नंगे फिर दे, सिर ते लबदे छावा, हे दाता तू मैनू सब कुछ दिता, मैं तेरा क्यों ना शुक्र मनावा। बाबा बुल्ले शाह कहते आखिर में कि हमसे ऊपर भी लोग हैं, हमसे नीचे भी लोग हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को, रहने को, पहनने को कुछ भी नहीं है, लेकिन हे ईश्वर तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितना भी दिया है मैं दिल से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। बस ऐसे ही जब हम ईश्वर को अपने साथ अपने जीवन में समर्पण भाव से लेके चलते हैं तो फिर जीवन एक शांति और आनंद की ओर चलना शुरू कर देता है। आपने मुझे ध्यान से सुना, मैं उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट हम फिर चर्चा करेंगे ऐसे ही अध्यात्म की कुछ अनकही अनसुनी बातों पर।

स्वर टंकामाया श्रेष्ठ सुमि श्रेष्ठ र कविता सेन्चुरी को सुमधुर आवाज में शब्द संगीत नावा फिंजु पाखिन इस तीज में केवल नाच्ने रमाउने मात्र होइन नारी का कथा र भावनालाई पनि महसुस गरौं।

0: ऋण अपलेखन सम्बन्धमा,
1: संस्थाको जग्गा बिक्री सम्बन्धमा,
0: शेयर लाभांश र संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष वितरण सम्बन्धमा,
1: नियमनकारी निकायको निर्देशन जानकारी सम्बन्धमा,
0: संस्थागत प्रतिनिधिको जानकारी सम्बन्धमा,
1: सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा,
0: सदस्यहरूबाट प्राप्त प्रस्ताव र सुझावहरू सम्बन्धमा,
1: संचालक समितिको पारिश्रमिक लगायत अन्य सेवा तोक्ने सम्बन्धमा,
0: संचालक समितिलाई अख्तियारी सम्बन्धमा,
1: धितो लिलामी सम्बन्धमा,
0: साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्नको लागि प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धमा,
2: क्षेत्रगत वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान।
1: मिति 2083 साल भदौ 20 गते। स्थान थाक्ले। समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म। समिति नै टोल तथा क्षेत्रहरू थाक्ले तथा बाँकेमेरी।
2: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म। स्थान साङुटार बजार। समिति नै टोल तथा क्षेत्रहरू साङुटार सबै।
1: सोही दिन दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म। स्थान च्याउकी छाँटी। समिति नै टोल तथा क्षेत्रहरू च्याउकी छाँटी र सालु बजार।
2: सोही दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। स्थान च्यास्कु। समेटिने टोल तथा क्षेत्रहरू च्यास्कु, बिसौली, होदिल।
1: सोही दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। स्थान रामपुर भन्ज्याङ। समेटिने टोल तथा क्षेत्रहरू रामपुर सबै।
2: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म। स्थान भालुखोप। समेटिने टोल तथा ओडाहरू चाम्बोट, गैरीगाउँ, भालुखोप र ओख्रेनी।
1: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म। स्थान बुद्ध चोक। समेटिने टोल तथा क्षेत्रहरू खोपटार, गाइटार र कटुन्जे।
2: मिति 2083 साल भदौ 21 गते। समय बिहान 7:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म। स्थान तल्लो सुनारपानी। समेटिने टोल तथा ओडाहरू तल्लो सुनारपानी सबै।
1: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म। स्थान च्यान्डाँडा। समेटिने टोल तथा ओडाहरू माथिल्लो सुनारपानी तथा सुनारपानी सबै।
2: सोही दिन दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म। स्थान मचबारी। समेटिने टोल तथा ओडाहरू मचबारी, पहरी टोल।
1: सोही दिन दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म। स्थान भ्याउरे। समेटिने टोल तथा ओडाहरू भ्याउरे सबै।
2: मिति 2083 साल भदौ 21 गते। समय बिहान 7:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म। स्थान सिमले। समेटिने टोल तथा ओडाहरू सिमले सबै।
1: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। स्थान लिखे बजार। समेटिने टोल तथा ओडाहरू सुकाजोर, छाप, पातले, हिलेपानी, पालेबन।
2: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। स्थान रजय छाप। समेटिने टोल तथा ओडाहरू रजय छाप।
1: सोही दिन दिउँसो 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म। स्थान मुडाजोर। समेटिने टोल तथा ओडाहरू मुडाजोर क्षेत्र।
2: सोही दिन दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म। स्थान मुगान। समेटिने टोल तथा ओडाहरू मुगान, थुम्का र ढिपी।
1: मिति 2083 साल भदौ 22 गते। स्थान कुनौरी। समय बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म। समेटिने टोल तथा ओडाहरू कुनौरी सबै।
2: सोही दिन बिहान 9:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। स्थान हातीटार। समेटिने टोल तथा ओडाहरू हातीटार सबै।
1: सोही दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। स्थान सेलेघाट। समेटिने टोल तथा ओडाहरू सेलेघाट सबै।
2: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। स्थान डाँडा खर्क। समेटिने टोल तथा ओडाहरू डाँडा खर्क सबै।
1: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म। स्थान केउरे पानी। समेटिने टोल तथा ओडाहरू केउरे पानी सबै।
2: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। स्थान मुगिटार। समेटिने टोल तथा ओडाहरू भटौली सबै।
1: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म। स्थान धारापानी। समेटिने टोल तथा ओडाहरू टेकनपुर, मन्थली 2 सबै।
2: मिति 2083 साल भदौ 23 गते। स्थान सल्ले। समय बिहान 9:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म। समेटिने टोल तथा ओडाहरू सल्ले सबै।
1: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म। स्थान डुम्री खर्क। समेटिने टोल तथा ओडाहरू डुम्री खर्क सबै।
2: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म। स्थान क्याम्पस चौर। समेटिने टोल तथा ओडाहरू लामा गाउँ, लामा टोल र रामेछाप बजार।
1: सोही दिन बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म। स्थान भङ्गेरी। समेटिने टोल तथा ओडाहरू भङ्गेरी, बाबिय खर्क।
2: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म। स्थान आरुबटे। समेटिने टोल तथा ओडाहरू आरुबटे सबै।
1: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। स्थान भीमसेन मन्दिर। समेटिने टोल तथा ओडाहरू सिमन्ती, पखेरा, भोटे गाउँ र ल्याङल्याङ।
2: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म। स्थान हुलाक डाँडा। समेटिने टोल तथा ओडाहरू भिरपानी, सिमपानी, हुलाक डाँडा र बेतेमी।
1: मिति 2083 साल भदौ 24 गते। स्थान सापमारे। समय बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। समेटिने टोल तथा ओडाहरू सापमारे सबै।
2: सोही दिन बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4

स्वर टंकामाया श्रेष्ठ सुमी श्रेष्ठ र कविता सेन्चुरी को सुमधुर आवाज में शब्द संगीत नावा फिंजु पाखिन इस चीज में केवल नाच्ने रमाउने मात्र होइन नारी का कथा र भावनालाई पनि महसुस गरौं।